0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
11: 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त मशवरा लो जी।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
1: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 97.1।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P।

0: 07646 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
2: You are listening 97.1 FM.

0: Zabardast hits.
1: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
1: I love it.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Fazan 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7.

0: है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: डिलीशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
0: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
0: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी, वाइब भी।
2: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.
6: फजान 97.1 एफएम.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 एफएम एंड डैप.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

Better, the radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: so hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station
3: that plays
4: foot tapping music.
5: Huzza 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Haza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: This is a public service announcement.
14: The station
15: that plays
16: foot tapping music.
17: Azar 97.1 FM.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली ज़ैनब फातिमा और रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के लाइव स्टूडियो से आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी हमारे सुनने वालों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो आप इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने से जहां कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, सो हमें लाजमी बताया करें कि आप हमें कहां कहां से सुन रहे हैं। एक बार फिर से बताते चलती हूँ, 01157100971 इट्स अवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये वो नंबर है जो मुझे आपसे और आपको मुझसे मिलाता है। यानी इस नंबर के जरिए से आप मुझसे वो सभी बातें कर सकते हैं जो कि आपके माइंड में चल रही हैं, और वो सब शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप किसी से भी शेयर करें, या अगर आपको चाहिए कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस तो उस सब के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पसंदीदा गाना हम अपने शो में शामिल करें, सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कोई ऐसा गाना जो आप अपने किसी चाहने वाले को डेडिकेट करना चाहते हो। सो radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, यानी जिसके थ्रू आप हमें अभी इस वक्त सुन रहे हैं। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रह सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में आने वाला है। टू द लिसनर्स, एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सी है। सो आपको बस करना होगा कि अगर तो आप एप्पल यूज़र हैं या फिर आप हैं एंड्रॉयड यूज़र, सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर। वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन यानी रेडियो फजा 97.1 FM की लाइव एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें ट्यून कर सकें और ये भी जान सकें कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस शो में आ रहा है। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी मौसम के हवाले से, और ये कि आज का मौसम कल की तरह इतना खूबसूरत, इतना हंसी और इतना सुहाना तो नहीं है, लेकिन हर दिन की अपनी हासियत होती है। सो इसी तरह से हर मौसम की भी अपनी हासियत होती है। सो अगर हम ये सोचें कि सदा बहार रहे या फिर सदा हवाएं चलती रहें, तो उस तरह से भी जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो जितनी हमारे लिए हवा ज़रूरी है, ठंडक ज़रूरी है, तो उतनी ही हमारे लिए ज़रूरी है धूप, धूप के साथ साथ सनलाइट। अच्छा, फर्ज करिए, इमेजिन करें, आज हम सब सूरज को उस तरह से अच्छा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि सूरज की वजह से गर्मी ज़्यादा हो चुकी है। पर अगर आप एक मिनट के लिए ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, अगर सूरज ना होता सो क्या हमें शमसी तवनाई मिल सकती थी? और सूरज के ज़रिए हम जो इतने हज़ारों काम करते हैं, क्या वो सभी पॉसिबल हो सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इस दुनिया में जो हर एक चीज़ है उसकी अपनी हासियत है, उसकी अपनी खूबी है। सो जिस तरह से हवा ज़रूरी है, उसी तरह से सूरज भी ज़रूरी है। मौसम तो अपनी तरह से गर्दिश करता रहेगा, कभी
थोड़ी सी सर्दी होगी तो कभी थोड़ी सी गर्मी होगी। सो वेल, हर तरह के मौसम को एंजॉय करना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। सो वेल, इसी पॉजिटिव सी बात के साथ साथ अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद अच्छे से प्यारे से ट्रैक को प्ले करने का। सो अभी तक तो मुझे मेरे लिसनर्स ने कोई ऐसा ट्रैक नहीं बताया जो मैं शो में शामिल करूँ। सो फिलहाल के लिए मैं एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है। सो डियर लिसनर्स, आइए वेलकम सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। आप सभी से मुलाकात होगी ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM एंड टैप के लाइव स्टूडियो से अपना फेवरेट शो द टीवा डायलॉग। तो लिसनर्स, जिंदगी में कभी कभी ऐसा अक्सर औकात लगता है कि हम बिल्कुल रुक से गए हैं, जिंदगी ठहर गई है। होता है ना आप सभी के साथ भी? अच्छा, मेरे साथ तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अक्सर औकात मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी बस अब एक जगह थम सी गई है। अच्छा, हम सभी को एक ज़रूरत होती है एक ऐसे मोटिवेशनल स्टेप की, एक ऐसी उम्मीद की जो कि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद दे, या फिर ज़िंदगी के जिस पॉइंट पे, जिस मोड़ पे हम स्टक हो चुके हैं, हमें वहाँ से धकेले।

भरा जिंदगी में रोज करते हैं। अब वो कोई सी भी चीज हो सकती है, हमारा काम, हमारी पढ़ाई या फिर हमारे ख्वाब। सो बेसिकली स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही बाकमाल और खूबसूरत सी बात कही है, जिसे आज मैं शो में शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सभी लिसनर्स को मालूम है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर शो में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करें जो कि पॉजिटिविटी से भरी हो, जिसके अंदर मोटिवेशन हो, ताकि सभी सुनने वालों को ज़िंदगी में कोई एक नई उम्मीद की किरण मिले। So our first quote says, the only way to do great work is to love what you do. अच्छा जरा गौर से सुनिए तो इस छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में सच में कुछ बड़ा, कुछ बेहतरीन, कुछ बाकमाल करना चाहते हैं, तो उस रास्ते से, उस काम से, उस चीज से मोहब्बत करना सीखिए। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, दिल लगा के करते हैं, तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। सो इस चीज का तहयुन तभी किया जा सकता है जब आप अपना काम दिल लगा के करें। अच्छा बता, हम सभी के साथ मसला आखिर होता क्या है? हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल कहीं और होता है। हम बाज़ुकात काम को बोझ समझ के, मजबूरी समझ के कर रहे होते हैं, उससे भी काम तो हो ही जाता है, लेकिन जो मजा दिल से करने में है वो मजबूरी में नहीं। अच्छा अब इस बात से एक एग्जांपल मेरे माइंड में आई है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी लिसनर्स के साथ भी शेयर की जाए। सो एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी है, बहुत बेसिक सी है, आप सभी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं, आप, हम सब इस फेज से गुजर कर आए हैं। अच्छा आप जरा बात करते हैं एक स्टूडेंट की। अब एक स्टूडेंट क्या काम करता है? स्टूडेंट का बेसिकली काम होता है पढ़ाई करना, और स्टूडेंट पढ़ाई तो करता ही है, क्योंकि उसे एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, उसे पास होना होता है, लेकिन वो क्या करता है, हमेशा मजबूरी से दिल बोझल करके ही पढ़ाई करता है। उसे हमेशा पढ़ते हुए इसी चीज़ का ख्याल आता है कि काश उसे पढ़ना ना पड़े, या फिर वो बिना एग्जाम दिए पास हो जाए। सो इसी तरह के हम अपनी नॉर्मली रोज़मर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम मजबूरी में कर रहे होते हैं। सो जब हम मजबूरी में कर रहे होते हैं, सो एक ऑटोमेटिकली माइंड में ये चीज़ आती है कि उफ काम में मज़ा नहीं आ रहा, और जब आपको काम में मज़ा नहीं आता तो आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, और फिर वही रेसिज्म आ जाता है कि हम दूसरों को देखते हैं और ये दिल में सोचते हैं फलां के पास ये चीज़ है, फलां के पास वो चीज़ है, और हमारे पास वो सभी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि आपने उन चीज़ों के लिए उस तरह से मेहनत नहीं की जिस तरह से फलाँ ने उन चीज़ों के लिए मेहनत की है। सो डियर लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, सो आपको चाहिए कि आप अपना काम दिल लगा के करें। जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स का तहिया करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एक इम्पॉसिबल सी बात है। सो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ये याद रखिए कि काम हमेशा वो करें जो आपको पसंद हो, और फिर उसमें अपनी जी जान लगा दें। सो इसीलिए माय लवली डिवास एंड मेरे सभी मेल हजरात लिसनर्स, अपने अंदर के उस पैशन को ढूंढिए, और जो भी करें पूरे दिल से करें। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्यारा सा मोटिवेशनल सा कोट ऑफ द डे। जैसा कि उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कोट अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं इसने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉजिटिव असरात मर्त किए होंगे। वेल, इस हवाले से आपका क्या कहना है? 01157100971।
हमारा नंबर है, आप इसके थ्रू बता सकते हैं कि आप

आज के कोर्ट के हवाले से क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा जरूर कि आप इस वक्त हमें दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं और क्या काम करते हुए सुन रहे हैं। लिसनर्स, इतने सारे ज्ञान के बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि काफी सीरियस डिस्कशन चल रही है, तो माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और शामिल करते हैं शो में एक ऐसा गाना जो कि हमारे एक प्यारे से लिसनर की फरमाइश है। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टी वर डायलॉग में सभी की फरमाइशें पूरी की जाती हैं और कोशिश यही रहती है कि वही गाने प्ले किए जाएं जो कि हमारे सब लिसनर्स को पसंद हो। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये एक प्यारा सा गाना उन लिसनर के नाम। अच्छा, ये जो हमारी लिसनर हैं बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी लिसनर हैं और रोजाना हमें हमेशा एक ही गाना प्ले करने का कहती हैं। आई थिंक सो ये गाना उनका पसंदीदा सॉन्ग है, सो क्यों नहीं हम जरूर प्ले करेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। होती है आपसे मुलाकात ट्रैक के उस पर, तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग जुड़े रहिए।

लिस्नर, जैसे ही मैंने ये गाना प्ले किया तो साथ ही हमें हमारी एक और लिस्नर ने फरमाइश की कि वो चाहते हैं कि उनका पसंदीदा गाना भी शो में शामिल किया जाए। सो जी नहीं, क्यों नहीं, ज़रूर हम ज़रूर शामिल करेंगे। सो जी ये तो था एक हिंदी सॉन्ग, अब ज़रा सुनते हैं एक ऐसा गाना जो कि आपके मूड को थोड़ा सा चेंज कर देगा, साथ ही साथ ये ज़रा डिफरेंट फ्यूजन का है। सो वेल आई थिंक सो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आइए मिलकर जरा सुनते हैं ये ट्रैक।

लिसनर्स, इसी तरह से आप सभी भी अपनी पसंदीदा रिक्वेस्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि सभी वो गाने प्ले हों जो कि आप सभी को पसंद हो। जैसे कि लिसनर्स, आगे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मौसम के हवाले से कि आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा हुई हुई है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनको सूरज से कुछ शिकायत है। अब जरा कंप्लेन की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो आई थिंक सो कि सबसे ज्यादा कंप्लेन सूरज से हमारी डिवाइस को होगी, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं सो मोस्टली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हीट वेव्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो सन टैन की शिकायत हो जाती है हमारी सभी डिवाइस को। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप सभी डिवाइस के लिए मैं लेके आई हूँ आज एक ऐसा DIY मास्क जो कि आपकी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करेगा। मैंने सोचा था कि चूंकि मेरी सभी डिवाइस इस शिकायत से दो चार हैं कि आजकल बहुत गर्मी है और गर्मी की वजह से स्किन बहुत डल लग रही है, सो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं लाजमी आज के शो में ये मास्क आप सभी से शेयर करूंगी। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की ज़रा बात करते हैं। सो इस मास्क को बनाने के लिए आपको कोई भी लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। हर्बल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हर घर में मौजूद होती हैं, हर किचन में मौजूद होती हैं। सो सिंपली आपने सबसे पहले ले लेना है बेसन। अच्छा, बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ना सिर्फ कुकिंग में काम आता है बल्कि स्किन केयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बेसन से बहुत सारे DIY मास्क बन सकते हैं और लोग बहुत सारे मास्क ट्राई करते हैं, लेकिन जो मास्क मैं आज आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ इसमें आपको दो तरह के फायदे होंगे। एक तो जो टैनिंग हो चुकी है वो रिमूव होगी, साथ ही साथ जो अब गर्मी की वजह से स्किन डल लग रही है वो भी कदरे बेहतर हो जाएगी। सो हमारे सभी डिवाज, स्पेशली वो डिवाज जो कि वर्किंग वुमेन हैं, डेली बेसिस पे उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है, दुनिया को फेस करना पड़ता है और दुनिया के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है और सूरज के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो पूरा DIY मास्क आप सभी से शेयर करती हूँ बाकायदा डिटेल के साथ। लेकिन अचानक से मेरी नज़र घड़ी की जानिब हुई तो मालूम हुआ कि वक्त थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि फिलहाल के लिए इस वक्त शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो अगर अभी मैं मास्क स्टार्ट कर दूंगी तो उम्मीद है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर जो हमारे सभी लिसनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हाफ इंग्रेडिएंट्स मैं ब्रेक से पहले बताऊं और हाफ इंग्रेडिएंट्स ब्रेक से बाद में। सो ज़रा ऐसा करते हैं कि चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और जब हम ब्रेक से वापसी पे आएंगे तो हम ये DIY मास्क आप सभी से शेयर करेंगे। सो फिलहाल के लिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर प्लेइंग फैजान 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली सैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैग के लाइव स्टूडियो से। सी तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीआईवाई मास्क की, सो अब जरा मैं आपसे डिटेल में उसके इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ और साथ ही साथ बताती हूँ कि किस तरह से आपने इस मास्क को यूज करना है। सो सिंपली इसके लिए आपको चाहिए बेसन। अब क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप कितनी मिकदार में इस मास्क को बना रहे हैं या आप इस मास्क को कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। वेल, आप इस मास्क को फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हाथों पे, बाजुओं पे और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी आपकी बॉडी एरियाज हैं जो कि सूरज की वजह से टैन हो चुके हैं, आप उन सभी पर यह मास्क लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये इशू होता है कि उनके हाथों के नकल्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, सो ये मास्क आप सभी के लिए भी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एल्बो में यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑर्गेनिक है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो अब ज़रा इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया बेसन, साथ ही साथ हमें चाहिए योगर्ट यानी कि दही। सबसे पहले आपने बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है और दही की क्वांटिटी थोड़ी सी कम। अब आपने साथ ही ले लेनी है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि टैनिंग को इंस्टेंटली रिमूव करता है। बेसन क्या काम करता है, स्किन को ग्लो अप करता है, लेकिन जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से स्क्रबिंग का काम करते हैं, साथ ही साथ स्किन की टैनिंग को दूर करते हैं, स्किन को फेयर और ब्राइट अप बनाते हैं। सो पहला हमारा इंग्रेडिएंट हो गया बेसन, सेकेंडली योगर्ट और थर्ड कॉफ़ी। अच्छा, अब हमें चाहिए साथ ही अ पिंच ऑफ टर्मरिक। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी भी होती है कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो वेल, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में टर्मरिक यूज़ करेंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि शायद आपकी स्किन इरिटेट कर जाए। सो क्वांटिटी को बहुत कम रखना है, जस्ट अ टाइनी अमाउंट। साथ ही साथ हमारे इस मास्क में शामिल होगा 1 से 2 चम्मच दूध। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा रोज वाटर भी ऐड कर लेना है। अब बस आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है, मिला के अच्छे से मिक्सअप करना है। और क्या, मिक्सअप करने के फौरन बाद आपका मास्क हो गया तैयार। बस आपने इसे वीक में 2 से 3 मरतबा यूज़ करना है। आप चाहें तो आप इसे सुबह यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो दिन को यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो रात में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने की कोई भी दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स टोटली योर ओपिनियन। सो जब आप इसको 1 से 2 मरतबा अप्लाई करेंगे, सो यू विल सी कि आपकी स्किन 1 to 2 शेड लाइटर होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, उस हवाले से ये मास्क बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो माय लवली डिवास, लाजमी इस मास्क को बनाइएगा और ट्राई करिएगा। साथ ही साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा, और अगर आपको इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी सी रेमेडीज चाहिए, सो लवली डिवास आप सभी मुझसे शेयर कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि वो सभी चीज़ें आपसे मैं शेयर करूं जो आप वाकई सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपकी और मेरी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से हो कि आपकी पसंदीदा बातें मैं करूं और आपसे आपका फीडबैक लूं। सो एक बार फिर से बता देती हूं, 01157100971
है शो में शमूलियत का तरीका, यानी कि इस नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बराए रास्त शो में शामिल हो सकते हैं। इसी बात के साथ साथ शो में वक्त हुआ है एक अच्छे से सॉन्ग को प्ले करने का, सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। वैसे रिसेंटली वीकेंड के गाने बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग तो है ही, लेकिन मैंने रिसेंटली इनको डिस्कवर किया है, सो दिल करता है कि ज़रा आजकल इन्हीं को सुना जाए। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और गपशप का सिलसिला तो फिर चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए गाना सुनते हैं।

जी तो लिसनर्स, कुछ सुनाइए अपने दिल का हाल और बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वेल, कल का मैच किस किस ने देखा? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप अपने जोरों शोर से चल रहा है और हमारे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ना सिर्फ एक्साइटेड बल्कि इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बेताब हैं कि फाइनली इस साल यानी 2026 का फीफा कौन जीतेगा। वेल, इस हवाले से आप सभी का क्या कहना है और जरा डिस्कस करते हैं कल के मैच के बारे में। अच्छा, मैंने सोचा कि जिस तरह से हम डेली बेसिस में दीवा डायलॉग में बात करते हैं गर्ली से रिलेटेड, गर्ली स्टफ से रिलेटेड, तो जितने भी हमारे मेल लिसनर्स होंगे वो सोचते होंगे कि दिस शो ट्रूली डेडिकेट्स टू ऑल वुमेन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी भी चॉइसेस को मद्देनजर रखें, प्रेफरेंसेस को मद्देनजर रखें और उस अकॉर्डिंग बातचीत करें। सो ये जरा बताइए कि कल का मैच आप सभी को कैसा लगा और आप सबने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या नतीजे आपके मुताबिक आए या फिर नहीं। वेल, अगर पर्सनली मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूं तो कल के मैच के हवाले से मेरा एक माइंडसेट था कि क्योंकि लास्ट टाइम भी जब फीफा हुआ था तो आप सभी को मालूम है कि फाइनल्स में थी दो टीम्स, टीम नंबर वन इज फ्रांस एंड सेकंड इज अर्जेंटीना। सो उस हवाले से जो हमारे शायकीन हैं, हमारे लिसनर्स हैं और हमारे सभी चाहने वाले, उनका एक माइंडसेट सेट हुआ हुआ है कि हो सकता था कि इस साल भी वही सेम टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हों। तो उस हवाले से सबको ऐसा लग रहा था कि कल का जो मैच है स्पेन वर्सेस फ्रांस, वो फ्रांस जीतेगा और फ्रांस जीत के फाइनल में जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत को कुछ और मंजूर था और कल की बाजी ले ली हमारे स्पेन ने। वैसे मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि मेरी सभी स्पोर्ट्स थी फ्रांस के साथ कल के मैच के हवाले से। और आज का जो मैच है, आज का मैच तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज है इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। और आप सभी को मालूम है कि आज तो हमारी टीम खेल रही है यानी कि इंग्लैंड। सो आज के मैच में सारी सपोर्ट है हमारी इंग्लैंड के साथ। वेल, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच ऐसा होगा जिस तरह से हम सभी ने एक्सपेक्ट किया हुआ है और इंग्लैंड ही जीतेगा। वेल, अगर पर्सनली मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं चाहती हूं दिली तौर पर कि आज इंग्लैंड जीत जाए। इट डजेंट मैटर कि अगर फाइनल इंग्लैंड नहीं भी जीतता, लेकिन ये भी एक प्राउड मोमेंट होगा और बहुत बड़ी चीज समझी जाएगी कि फाइनली इंग्लैंड फाइनल्स में पहुंचा। सो वेल, बेस्ट विशेज हैं आज के मैच के हवाले से, फीफा के हवाले से। और हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर इस हवाले से या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, रिव्यू शेयर करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, सो मुझे लाजमी बताइएगा। आपको और मेरा रबते का नंबर एक ही है, सो उस नंबर को सेव कर लीजिए। और जब भी आप अपना फीडबैक शेयर करें तो कोशिश किया करें कि अपने नाम के साथ शेयर किया करें, इससे पता चलता है ना कि कौन कहाँ से और क्या हमें बता रहा है।

कल रैंडमली नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते करते मुझे एक बहुत ही कमाल और शानदार सीरीज मिली। यह सीरीज है तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ कि मैंने अभी तक ये देखी ही नहीं थी, और जब कल मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखना स्टार्ट किया तो आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी सीरीज, इतना बड़ा हिडन जैम कैसे, और ऐसा कैसे हो गया कि मैं जो सीरीज़ लवर हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये सीरीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है, या कभी मेरे माइंड में क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं इसको देखूँ। वेल लिसनर्स, एनी गेसेस कि मैं किस सीरीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? सो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ द वैम्पायर डायरीज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ द नेटफ्लिक्स इज द वैम्पायर डायरीज। और जब मैंने कल इसको स्टार्ट किया एंड देन रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, स्टोरी प्लॉट वगैरह के बारे में थोड़ा जाना, सो आई एम शॉक्ड प्लस सरप्राइज कि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और कमाल सीरीज़ है। एंड आई होप कि जिस जिसने भी ये सीरीज़ देखी होगी वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे। वेल लिसनर्स, अभी तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, एपिसोड 1 देखा है, और ऑनेस्टली ये बहुत ही ज़्यादा लंबी सीरीज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी सीरीज़ के इतने ज़्यादा सीज़न नहीं देखे, एक सीरीज़ के बस देखे थे क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से पसंद थी, इट्स द स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स की द फर्स्ट सीन ये हुआ था कि जब अभी रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग का लास्ट सीज़न रिलीज़ हुआ, तो उस वक्त मैं फ्री थी, ज़्यादा काम काज नहीं हुआ करता था, सो मैंने उससे सीज़न 1 से स्टार्ट किया और सीज़न लास्ट तक देखा। और जब आप सारी सीरीज़ को लास्ट तक देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने फाइनली सीरीज़ में भी वेरिएशन देखा। अगर सीज़न 1 की बात की जाए तो सभी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, और फाइनल तक पहुँचते हुए सब कैरेक्टर्स इतने बड़े हो गए, यानी कि सीरीज़ के साथ साथ हमें एल, माइकल, उसके अलावा सभी कैरेक्टर्स का भी ग्लो अप दिखने को मिला। वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा कमाल सीरीज़ है। अगर वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई होगा इस दुनिया में ऐसा कि जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी होगी। वेल, अगर आप सभी में से किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, लास्ट में इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल सीरीज़ है। बाकी बहरहाल द वैम्पायर डायरीज मैंने कल स्टार्ट कर ली है, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि डेली बेसिस पर आजकल मसरूफियत भी कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। लेकिन डोंट वरी डिवाज, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से कंप्लीट करके आप सभी से इसका रिव्यू शेयर करूँ कि मुझे ये सीरीज़ कैसे लगी, क्या आपको ये देखनी चाहिए या आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही शो का वक्त हुआ अपने इख्तिताम के करीब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमने इतनी ढेर सारी बातें की कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिला रेसिपी शेयर करने का। सॉरी, आपकी इस शिकायत को कल दूर किया जाएगा, और कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ढेर सारी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज। सॉरी लिसनर्स, जाते जाते सोच रही हूँ क्यों ना एक अच्छा सा पॉजिटिव सा मोटिवेशनल सा कोड आप सभी के साथ शेयर करती हुई चलूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि शो का आगाज जिस तरह से पॉजिटिव है, तो क्यों ना शो का इख्तिताम भी पॉजिटिव हो। सो आवर नेक्स्ट एंड सेकंड कोट सेज, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ अवे देयर। सो बेसिकली इस खूबसूरत से कोट का मीनिंग कुछ यूं है कि बस इस बात पर यकीन कर लो कि आप ये कर सकते हो, समझिए आपने ये आधा रास्ता खुद ब खुद तय कर लिया। याद रखिए लिसनर्स, जब तक आपका अपना दिल गवाही नहीं देगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब तक पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं बदल सकती। जंग पहले दिमाग में जीती जाती है, मैदान में बाद में। सो अगर आपने ठान लिया है कि आपने जीतना है, तो आधा सफर तो आपकी सोच ने ही तय कर लेना है, बाकी का आधा सफर तो फिर मेहनत खुद ब खुद पूरा कर देगी। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा प्यारा सा मोटिवेशनल सा सेकंड कोट।
माय लवली डिवर्स एंड सभी लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अपने काम से मोहब्बत कीजिए और खुद पर मुकम्मल यकीन रखिए, फिर देखिए दुनिया कैसे आपके पीछे आती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की बातें आपके दिल को जरूर लगी होंगी और इन्होंने आपके दिल में कोई ना कोई पॉजिटिव नक्श जरूर छोड़ा होगा। सो इन्हीं प्यारी सी खूबसूरत सी बातों के साथ साथ दीवा डायलॉग का ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सभी से मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए लिसनर्स अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और साथ ही साथ उन सभी लोगों का ख्याल रखिए जिनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से कनेक्टेड है।

सॉरी लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ जाते जाते एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए प्ले करती चलती हूँ। तो जी सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और साथ ही साथ मुझे अपनी आरजे ज़ैनब फातिमा को भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 011-592-9884 या 077-021-0793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM।

लेकिन इसी के साथ साथ कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, कोई खूबसूरत सा ट्रैक किसी को डेडिकेट करना चाहे या फिर हमारे लिए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, या फिर अपने लिए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहे तो वो भी करवाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को हमेशा पहले नंबर पर रखें, बाकियों को जो है वो बाद में लेकर आए आगे। फिर प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है कार बड़ा ही आसान सा है, 1157100971 इस खूबसूरत से नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सो आपको वहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जो करना चाहते हैं सो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी radiofaza.co.uk वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, और वहाँ पर जाकर आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। सो हमेशा की तरह प्रोग्राम में बड़े मजे के टॉपिक में शामिल करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल किए जाएँ वो आपकी फरमाइश पर शामिल हों, क्योंकि ट्रैक भी आपकी फरमाइश पर शामिल किए जाते हैं, तो टॉपिक भी जो है वो आपकी मर्जी का प्रोग्राम में शामिल। बल बताइएगा जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं तो एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, बी सेफ बी केयरफुल, और खवातीन जो मुझे घर बैठे सुन रही हैं मैं भी नहीं बल्कि मुझे पता ही है क्योंकि दोपहर का टाइम हो जाता है तो इस टाइम पर जो है खाने पीने की तैयारी होती है, अगर किसी रेसिपी की समझ नहीं आ रही कोई रेसिपी हमसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, और वैसे तो मैं ड्रेसिंग के बारे में भी जो है अपने प्रोग्राम में गपशप करती हूँ सो उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी लीजिएगा, और जो लोग ऑफिसेज की तरफ निकल चुके हैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छे से गुजर रहा होगा, अगर नहीं गुजरा तो हम मिलकर इसको खूबसूरत बना देंगे, क्योंकि अपनी आवाज़ के साथ साथ तो हम आपको मजे के ट्रैक भी सुनाते हैं। प्रोग्राम का काज हमेशा की तरह करती हूँ मैं एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, बस उस ट्रैक को ढूंढने में मुझे थोड़ी सी देरी हो जाती है, मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि मैंने ट्रैक करना कौन सा शामिल है, बट जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक तब तक आप सुनिएगा सलूर राज के पसंदीदा ट्रैक्स।

मेरे ख्याल में जब मैं आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी कर लेती हूँ ना, तो मेरे गले को पता चल जाता है कि यार सलू राज, अब बोलना है तो बोलते ही जाना, बोलते ही जाना। बट कोई बात नहीं, हम कौन सा थकने वाले हैं, हम कौन सा हार मान लेंगे। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले घबराना नहीं है, अगर हम घबरा गए तो हम हार गए।

अभी सुबह सुबह मैं उठी ना तो खैर सुबह तो मैं नहीं उठती इतनी, सुबह सुबह मेरी आँख नहीं खुलती, बट मैं उठती हूँ। उठ के जब भी उठी जने, मैं उठ के मैंने एक मतलब अचानक से मेरे दिमाग में एक ट्रैक आया। मैंने सोचा कि यार ये ट्रैक मैंने कहाँ पे सुना हुआ है। मुझे याद है कि मैंने रात को रील में देखा था, किसी एक किसी की पोस्ट थी शायद, आई थिंक उस पे ये ट्रैक लगा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं आपको आके ये ट्रैक ज़रूर सुनाऊंगी। और इसी के साथ है मेरे पास आपके लिए एक और भी बड़ी प्यारी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ कुछ इस तरह से है। और मुझे अब उस सिंगर का नाम नहीं पता, बट अभी उन्होंने रिसेंटली एक गाना जो है वो गाया था, कुछ इस तरह से था कि पत्थरा चो डिग दे हंजू अख मेरी फिर भी रोई ना। पता नहीं इस सिंगर का नाम क्या, बट मैं सर्च करती हूँ इस सिंगर का नाम, वो मैंने, और इन्होंने भी जो है ना अपना रिलेशनशिप जो है वो रिवील कर दिया भाई। मतलब हम ही लोग सिंगल रह गए हैं सिर्फ, मतलब सबने अपने मतलब रिवील कर दिया और हम ही रह गए हैं। मतलब मेरे ख्याल में दुनिया काफ़ी आगे निकल गई और हम अभी भी पीछे ही रह गए। मतलब हम सिर्फ आप तक महदूद रह गए कि आपसे गपशप करनी है, आपके साथ ही लगे रहना है। मेरा दिल है मैं भी जाऊँ जो है ना रेडियो पे, कभी ना कभी अपना जो है ना वो उनको रिवील कर दूंगी। खैर मुझे किसने सुनना है, आप सुनेंगे और किसने सुनना है, पर सुनने वाले जिनको सुनाने के लिए हम आते हैं वो तो हमें सुनते नहीं हैं, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं हम उनके भी ताबेदार हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का, उन नई समातों का जिन्होंने आज रबी फजल 97.1 FM उनके रबी के लिए प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खूबसूरत ट्रैक के साथ। और मुझसे कल जो है ना किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार आप इतना बोलती हैं, आप थकती नहीं हैं, तो मैंने उस टाइम पे मेरे शो का टाइम भी ख़त्म हो गया था और मेरे ख्याल से मैं अल्लाह हाफिज़ भी कर चुकी थी।

0: मैंने सोचा था कि कल आकर इस बात का जवाब दूंगी। जवाब बड़े ही प्यार से, मुझे कहा गया था कि आप इतना बोलती हैं, आप थकती नहीं है सल्लू राज? तो मैंने सोचा कि यार जहाँ पर आप जैसे खूबसूरत सुनने वाले लोग होंगे वहां पर कौन ही थक सकता है बेवकूफ। खैर गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा, प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहता है। ठीक है, ठीक 2 बजे तक अभी के लिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ। ट्रैक कुछ इस तरह से है कि इसमें आपको अलिफ बे याद करवाई जाएगी, मतलब करवाई नहीं जाएगी, ट्रैक कुछ इस तरह से है, मतलब आप सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी तक के लिए स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप। अब मिलते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक के उस पार।
1: कबूल है,
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। बोल फिर ज्ञान आप सुनिए, लंच बॉक्स ऑन, जब आप सुनिए जरूर आज की सबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है ना, मेरे पास एक और ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको भी ग्राम में शामिल करें। दुखी दुखी ट्रैकों की फरमाइश मत कीजिए प्लीज़, मैं इनको शामिल नहीं कर सकती, बट मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। सवाल अभी मिलते हैं स्ट्रैकर्स पर, स्ट्रैकर्स पर मिलेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते जाएंगे प्रोग्राम के हवाले से। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड डैब। मिलते हैं स्ट्रैकर्स पर।

उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। थोड़ी सी आपको बीच में किसी जानी पहचानी शख्सियत की आवाज़ भी सुनाई दी होगी, बट कोई बात नहीं, खैर है। स्वीट आवाज़ थी स्वीट आज उस्मान खान की। सो वेल, अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम है, हम इस ट्रैक को शाम करते हैं। ट्रैक के उस पार जो है मेरा कदम हाल होगी एक छोटी सी चुनौ मुझे कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के पार फिर रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फजा 97.1 FM एंड टैप, कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलो राज।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वर्जन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ सोलोजी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं और साथ साथ आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई जा रही है। अभी गला भी थोड़ा गड़बड़ करने लग गया है। प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो हम शामिल करेंगे जिंदगी के वाले से डिस्कस जो है वो करेंगे और बात कुछ इस तरह से मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रही। प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम शामिल करवाया गया है कि बस दफ़ा कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी गुजारने के बाद भी हम ये नहीं जानते कि जो

बस बस जो है वो सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम जिंदगी में हर किस चीज़ की जरूरत थी। और बस जिंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज़ को हमने जिंदगी का असल जिस जिंदगी को हमने हासिल बनाना मतलब जिस चीज़ को हम हासिल करना चाहते थे उसके बगैर जिंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। क्योंकि बाज़ वक़्त हो जाता है ऐसे कि हम जिस चीज़ के पीछे जिद कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, उस चीज़ में कोई हमारे लिए फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, फिर भी हम उस चीज़ को जान जान के भी जो है ना उसके पीछे भागते हैं। और जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद हमें एहसास होता है कि नहीं यार ऐसे नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो है ना ये मकसद, ये मामला, ये सारा सिस्टम इसीलिए होता है कि ताकि हमें आने वाली ज़िंदगी में जो है ना इस तरह की गलती दोबारा ना कर सकें। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, कोशिश करें कि इसको अच्छे से गुजारें, अच्छे से सबके साथ ट्रीट करें, अपनी खुशी के लिए ही नहीं सिर्फ बल्कि दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखें। और जब आप दूसरों की खुशी का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली जो है ना ऊपर वाला आपकी खुशी को मज़ीद दुगना कर देगा। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के हक में दुआ करते हैं तो वो पहले दुआ वो जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो पहले आपके हक में कबूल होती है। जब आप किसी की खुशी के लिए दुआ करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले आपके हक में कबूल होगी। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, ये सिर्फ एक बात है। अब ये ना हो कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों के लिए दुआ करना भी शुरू कर दें, नहीं, अपना फ़ायदा देखें लेकिन किसी लालच के तौर पे नहीं। खैर अभी उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है आपके साथ बातें डिस्कस करूंगी। अभी मेरे गले में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और पता नहीं क्यों, बट आई डोंट नो हो रही है। सो इसको थोड़ा सा गर्म पानी पी के जो है इसको नॉर्मल करके आते हैं। तब तक आप इस खूबसूरत सी छोटी सी फरमाइश को सुन लीजिएगा, फिर आकर आपको वापसी भी अपनी आवाज़ भी सुना देते हैं। अभी घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड डैप।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च बाद आप सुन रहे हैं सुरराज की समोसे के साथ साथ। प्रोग्राम में जब ट्रैक शाम के जा रहे थे और साथ ही में जो है हम आप जो है वो क्या बोलने जा रही थी, एक तो बुलक्कड़ सी हो गई ना, बातें भूलना शुरू हो गई मुझे। खैर अब बात करते हैं हम जिंदगी के हवाले से, जिंदगी के हवाले से डिस्कस स्टार्ट कर रहे थे तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप तक तो पहुंचाई जाएगी ताकि आपको उसकी समझ भी आए और साथ ही साथ आप ये भी जान सकें कि कोशिश ही किया करें कि जो चीज़ आपको समझाती हूँ उस बात पर अमल भी करें, क्योंकि यकीन जाने किसी भी मेरी बात पर किसी भी बात पर अमल कर ले तो मैं समझूँ कि मैं प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका। कहते हैं कि इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। अच्छा ये भी किस्म का सबक ही मिलता है जिंदगी में, और जिंदगी के इम्तिहान जो है ना वो किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं, मतलब उसकी कोई वाहिद उम्र नहीं होती कि इस उम्र में आके आपके साथ ये हो जाएगा, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये सोचे कि अगर आपके लिए वो शुरुआत हो चुकी है तो ये आपके आने वाले वक्त के लिए बेहतरी है। जिंदगी में जो परेशानियां आती है वो हमें सिखाने के लिए आती है, ना कि हमें परेशान करने के लिए आती है। बस हम लोग अपने आप को ज्यादा उस चीज की तरफ कर देते हैं और हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सो ऐसा हमें पता है कि हमने उसको कैसे हैंडल करना है। सो अगर इंसान जब जिंदगी में दानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो दिल दुखा भी दे कोई तो बुरा नहीं लगता, ये बात वाकई में है। और फिर उसके बाद किसी भी इंसान की कोई बात बुरी नहीं लगती, फिर किसी के साथ किसी भी किस्म का गिला करने का दिल नहीं करता, किसी को बुरा बोलने का दिल नहीं करता। और अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो आप चुप करके सुनते रहते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक इंसान आप पे यकीन करता है, आपके साथ सच्चे दिल से सच्चे मन से चलता है, तो उसको ये फील मत करवाएं कि उसने गलती की है, उसने उस राह पर चलकर गलती की है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे मालूम नहीं था कि जिस रास्ते पे मैं तुम्हारे साथ चल पड़ी हूँ वहाँ पर वापसी मुझे अकेले लौटना पड़ेगा। सो ऐसे रास्तों पर बिल्कुल भी मत चलें जहाँ से आपको वापसी की रवाना होना तो आप अकेले चलें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने जो है ना ज़िंदगी को लेकर किस तरह से चलना है। और दूसरी बात ये कि आप बेहतर जानते हैं कि आप ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चल सकते हैं। दूसरों की बातों में आकर उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। तुम गले लग जाओगे। और हम लोग ऐसे हैं कि अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई ठोकर लग गई ना तो मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना भाई, ज़िंदगी में ये ठोकरें लगती हैं इंसान को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप मजबूत बन जाएंगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो मेरे ख्याल में बर्बाद नहीं कर सकती। उम्मीद में मेरी ज़िंदगी गुज़र। बस यही समझें कि अगर कोई आप पे अंधा एतबार करता है तो उसको अंधा मत समझने लग जाएं। एतबार एक वो चीज़ है जो एक ही दफ़ा होती है, एक दफ़ा होता है, और एक दफ़ा वो टूट जाए तो दोबारा उस चीज़ पे दोबारा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपने किसी के साथ किसी भी तरह का धोखा किया है, किसी भी तरह की कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी भी तरह का कोई आपने कर दिया, तो आपकी वजह से वो इंसान आगे आने वाले किसी भी इंसान पर यकीन नहीं कर सकेगा। और हमारा ये है कि हम लोग किसी एक चीज़ से धोखा खा लेना तो हम आने वाली ज़िंदगी में अच्छे लोगों से जो है ना वो दूर हट जाते हैं। इसी बात से कि यार नहीं भी उसे भी उसी की तरह का, फिर कहते हैं कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। खैर गपशप का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। पिछले प्रोग्राम में जो मेरे पास फरमाइश आई थी इस ट्रैक की, सो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक बना लिया जाए ताकि आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहें, क्योंकि मैंने गपशप भी तो आपके साथ लगानी, इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी है। प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आप तक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए और साथ ही में जो है वो आप हमारी आवाज को भी सुनते रहे।
1: पाओगे मैं ये बाहें खोल दूंगा, तुम गले लग जाओगे।
0: अभी के लिए जो है वो प्रोग्राम में मेरे पास एक और छोटी सी जो है फरमाइश मौजूद है, सो अभी की उसमें उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। फिर इसके बाद में आपके दरमियान हाल होगी एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर रहेगी आपसे मुलाकात।

वाला ही चलते हैं एक ट्रैक की जाने में। ट्रैक के उस पर एक छोटी चुनो मंजी कमर्शियल ब्रेक होगी और साथ ही में मेरा होगा आपका साथ। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनतवी समाजों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज, आप सुन रहे हैं सलोराज की सोलोसी के साथ साथ। फिर ग्राम में आयल हुई एक छोटी सी ब्रेक, मुझे ब्रेक पोस्ट पा रही है आपसे मुलाकात। अभी के लिए जो है वो फिर ग्राम में मेरे पास बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है और मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आपके साथ शेयर किया जाए। इंतज़ार करें जितना ज़रूरी हो, मोहब्बत उतनी करें जितनी ज़रूरी हो, बात उतनी करें जितनी ज़रूरी हो, गुस्सा इतना करें जितना ज़रूरी हो, खाना इतना खाएं कि जितना ज़रूरी हो, गिला उतना करें जितना ज़रूरी हो, वक्त इतना दें जितना ज़रूरी हो, एतबार इतना करें जितना ज़रूरी हो, नफ़रत इतनी करें जितनी ज़रूरी हो, दौलत इतनी कमाएं जितनी ज़रूरी हो, हर जितना करें जितना ज़रूरी हो। अभी अगर मैं इन बातों को अलग अलग से टॉपिक में लेकर आऊँ ना तो यार बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे पास तो आपके दरमियान टाइम भी नहीं इतना होता, 2 घंटे का टाइम होता, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है। और जब मुझे गपशप करने का मज़ा आता था तो फिर वो टॉपिक भी और टाइम ख़त्म हो जाता है। अभी मुझे इस पर जो मज़े का टॉपिक लगे ना वो एतबार इतना करें जितना ज़रूरी हो। कभी कभार जो है ना हम जानबूझ के लिए इंसान पे ज़्यादा एतबार करने लग जाते हैं, हमें पता भी है कि वो धोखेबाज है, धोखा देगा, लेकिन फिर भी हम अपनी एफर्ट ज़्यादा लगा देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि हमें सब पता होता है, इंसान को सब मालूम होता है, जब आप किसी भी तरह के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो उसको सब मालूम होता है कि वो किस तरह से उसको लेकर चल सकता है, लेकिन ये फिर उसकी उसका दिमाग इतना है कि वो यार उस चीज़ को फिर भी करता है। लेकिन वही बात आ गई कि एतबार बहुत बड़ी चीज़ है और ये हर किसी पे नहीं होता। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप किसी नई जगह पे स्टे करते हैं, किसी नई जगह पे रहते हैं, तो किसी ना किसी इंसान पे जो है ना वो यकीन करना ज़रूरी हो जाता है। किसी एक इंसान पे यकीन के बगैर आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पर मतलब रह नहीं सकेंगे उस तरह से। बट मुझे ये लगता है, बट मैंने बहुत से लोगों की ये भी बातें सुनी हैं कि नहीं आप अपने आप में मगन रहें, दुनिया वालों को छोड़ दें, इस तरह ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये भी बात अच्छी है कि आप अपने काम से काम रखें, दूसरों को इतना बुलाएं मत, इतना सर पे ना चढ़ाएं। जब आप दूसरों के साथ आपका फ्रैंकनेस जो है वो अपनी कर लेते हैं तो फिर वो फ्रैंकनेस का जो है वो अंजाम थोड़ा आगे की जब निकल जाता है, फिर हमें खुद भी बाद में एहसास होता है कि नहीं यार इतनी फ्रैंकनेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए थी। तो बाद में ये चीज़ें भारी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है। शुरू में तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो मतलब अच्छी होती नहीं है, बट शुरू में हर चीज़ ही अच्छी लगती है, बाद में पता चलता है। वो कहते हैं जब नई नई चीज़ आती है ना उसका नया नया शौक होता है, और फिर वो जब शौक ख़त्म हो जाता है तो फिर वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बातें, वही मायूसी और वही फिर पछतावा। खैर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ हो जाए

दिया हुआ है, जो उसकी नेमत है आपके पास, उस पे शुक्र अदा करना सीखें। पर मैं इतना ही बोलूँगी कि ये दुनिया, तब ये बात सबको ही पता है कि ये दुनिया फ़ानी है, और दुनिया में मेरे ख्याल में किसी पे यकीन करना ज़रूरी भी नहीं है। आप रब की ज़ात पे यकीन रखें, ऊपर वाले पे यकीन रखें, वो आप कभी मायूस नहीं होने देगा। जब हम उसको छोड़कर दूसरों की तरफ जाते हैं ना ये चीज़ें ढूंढने, तो फिर वो हमें थोड़ा सा गुमराह कर देता है, वो फिर हमें थोड़ा सा जो है ना परेशान कर देता है, ताकि हम दोबारा घूम के उसकी तरफ जाएं, फिर जाके उसके पास जाना वापस, और फिर वो कहता है कि हाँ बंदे बता के कौन था मेरा तेरे सिवा, यानी कि कौन था तेरा मेरे सिवा। खैर, अगर बुरा वक्त चलेगा तो अच्छा वक्त भी चलेगा, जरूर आएगा, क्योंकि वक्त जो है वो पहिए की तरह गोल गोल घूमता रहता है, अगर आज ऊपर है तो नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसा होता रहेगा। सो बस अभी के लिए जो है वो एग्जाम में पास एक छोटी सी फरमाइश है, उसको पूरा कर देते हैं अगर आप कहते हैं तो, वरना तो नहीं। बट कल भी मैंने शायद इस ट्रैक को शामिल किया था अपने प्रोग्राम में, और काफ़ी मज़े का था ये ट्रैक, और फिर आज मेरे पास फरमाइश भी है कि इस ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। सो ज़रूर करेंगे, अगर कहती हैं तो आपका नाम प्रोग्राम में शामिल नहीं करना, ओके नहीं करेंगे, मैंने मैसेज रेट पढ़ाऊँगा। दरअसल जो है ना, जो फरमाइश आई है उसको थोड़ा रासदार रखा जाएगा, आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब, और इस ट्रैक के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड DAB, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सोलसी के साथ साथ छोटा सा ट्रैक शाम गया था प्रोग्राम में, और बोलने की बारी आती है और फिर फरमाइशें आना शुरू हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, सोच रही हूँ इसको शामिल कर दूँ या आपसे थोड़ी गपशप कर लूँ। क्या गपशप तो चलती रहेगी आपके साथ, ट्रैक ही शामिल कर देते हैं। ये ना हो फिर आप लोग बोलें कि सलराज तो हमारी फरमाइशें नहीं पूरी करती, हमारी तो ख्वाहिशात ही नहीं पूरी कर रही। खैर इस बात का इस मुलाकात, सो कहीं नहीं जाना जुड़ा है फजा के साथ एक बार फिर से सलराज।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सोलोसी के साथ साथ प्रोग्राम में मुहाफिज ड्रामे को वास्ते शामिल किया, मैं बस फरमाइश रहती इस ट्रैक की और उम्मीद कर दूँगा आपको पसंद भी आया होगा। वही बात आ गई ना कि जब मैं आपको कोई नया गाना सुना देती हूँ ना, फिर आपको वो पसंद आ जाता है, फिर आप उसको प्रोग्राम में शामिल करवा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरी और आपकी जो चॉइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, फिर खासा मतलब डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, बट बहुत ऐसी फरमाइशें मेरे पास आती हैं जो मुझे भी बहुत पसंद होते हैं ट्रैक। ये उसी के साथ साथ दोस्ती की बात सामने आ गई है भाई, मेरे दोस्त के लिए ट्रैक शामिल कर दे। मेरे पास बड़े खूबसूरत मैसेज रिसीव हुआ है पाकिस्तान से, हमें इस्लामाबाद से सुन रहे हैं हसन। हसन ने हमें मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं तो मेरी भी फरमाइश पूरी कर दीजिए, क्यों नहीं, ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे हम। हसन ने कहा है भाई कोई भी नहीं है, बस मेरे दोस्त के लिए कोई ट्रैक प्ले कर दे। वाह वाह वाह वाह, तो यार दोस्ती जो है ना, वो एक ऐसा रिश्ता है जो वो कभी भी ख़राब नहीं होता। लड़कियों का तो खैर हो ही जाता है, लड़कों का मुझे पता नहीं होता। लड़कियां जो है ना, वो सड़ना सड़ाने वाला बीच में सीन आ जाता है ना, जेलस होने वाला वो सीन हो जाता है, वरना तो लड़कियों की दोस्ती भी अच्छी है। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी मुखलिस होती हैं और जलती वगैरह नहीं एक दूसरे से, और बहुत सी ऐसी भी देखी हैं जो साथ रह के भी ऐसे जलती घुटती हैं यार के पता भी नहीं चलने देती। खैर, आपकी छोटी सी फरमाइश को हम प्रोग्राम में लाजमी पूरा करेंगे। और इसी के साथ साथ मुझे भी फिर याद करा दिया मेरे दोस्तों के बारे में। कभी कभार जो है ना, वो आपको गुजरे हुए पल याद नहीं करने पड़ते, लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है या कोई बात ऐसी कर देते हैं कि आपका प्रोग्राम, मतलब कोई इंसान बात ऐसी कर देता है, फिर गुजरे हुए पल जो है वो अपने आप याद आने लग जाता है। याद करने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है। लेकिन चले कोई बात नहीं, किसी ना किसी बहाने से किसी चीज़ की याद आना अच्छी बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी के साथ साथ जो है वो फरमाइश आपकी जो आई थी ट्रैक की, वो मैं ज़रूर पूरी करूँगी। लेकिन फिर दोस्ती के वास्ते हम थोड़ी गपशप भी करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी के लिए प्रोग्राम में जो है उस फरमाइश को पूरा कर देते हैं, ये ना हो फिर मेरे और आपके दरमियान एक छोटी सी कमर शुभ ख्याल हो जाए। आइए चलते हैं ट्रैक की जानिब। ट्रैक इस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप।
1: कैसे मानूं है तू जुदा।
0: मिलते हैं इस ट्रैक के उस पर।

0: जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से।
1: जीने की बात से
0: बस दफ़ा जो है ना ट्रैक शामिल तो आप करवा देते हैं और मुझे भी दुखी कर देते हैं। कितनी दफ़ा बोला कि सेंटीमेंटी वाला माहौल नहीं बनाना होता प्रोग्राम में, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे बन गया सो बन गया। अभी के लिए जो है प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल किया था दोस्ती के हवाले से और गपशप का सिलसिला उस तरह से है। अभी ने अभी मेरा को दर्द के हाल होने लगी, छोटी कमर्शियल ब्रेक सो इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात एक छोटी कमर्शियल ब्रेक के पार। साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस ट्रैक के कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाचार को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं फोक्स सॉन्ग, जो आप सुने हैं सलू राज की सोलो जी के साथ साथ। प्रोग्राम में जो एक छोटी मुझे ब्रेक आ चुकी थी, मुझे ब्रेक उस पर आपसे मुलाकात अभी के लिए जो हमारा लास्ट आधा घंटा बाकी रह चुका है, और हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है वो हम रखते ही जो है म्यूजिक है, और उस पर जो है मैं आपकी ढेरों फरमाइशों को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन मुश्किल ब मुश्किल जो है ना वो भी दो तीन ही पूरी होती है मेरे से, क्योंकि बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ। बुलक्कड़ भी, एक तो बुलक्कड़ भी है और ऊपर से बोलने वाले बतूनी भी बहुत हो, तो फिर मेरी बातें आपके अलावा कोई सुनता भी नहीं है, मेरी बकबक किसी ने आपके अलावा सुननी भी नहीं है, तो फिर यही बात है ना कि मैंने ये सारा जो सारे दिन की जो बातें होती हैं मैंने आपके साथ ही करनी होती हैं। खैर मेरी ऐसी बात नहीं है, आप भी मुझे अपनी आवाज़ सुना सकते हैं। जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है वो 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। बोला आप अपनी आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं लाइव कॉल के थ्रू, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप मेरे साथ ढेरों गपशप कर सकते हैं, कोई सवाल मुझसे पूछना हो वो भी पूछिएगा, और कुछ और भी कोई भी बात करनी हो, कोई बात शेयर करनी हो वो भी मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा प्लीज़, और साथ ही में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे लेना चाहें वो भी बताइएगा। पर मसला ये है ना कि आपने मुझे कॉल करनी नहीं, एक तो आप शर्माते बहुत हैं, मैसेजेस तो आप मुझ तक पहुँचाते रहेंगे, आवाज़ नहीं भाई मुझे आपसे भी सुनानी। फिर यहाँ से बैठ के मैं अपने से यही बात सोच सकती हूँ कि शायद आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप मेरी आवाज़ ही सुनते रहते हैं। खैर अगेन एक बार बता देते हैं, प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है 01157100971। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk की आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो वहाँ से आपको मिल जाएगी, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजल 97.1 एफएम के नाम से। प्रोग्राम का मकसद होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मीडिया आपकी होती है कम्युनिकेशन, और होती है मिल्क एंटरटेनमेंट। लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो है वो प्रोग्राम में पास एक छोटी सी फरमाइश मौजूद है, उसको शामिल कर देते हैं कि ये ना फिर आप बोलेंगे सलराज फिर बातें करना शुरू हो गई और फरमाइश तो पूरी कर ही नहीं रही। भाई मुझे शिकायतों से बहुत डर लगता है, सोचा तो यही था कि सैड ट्रैक शामिल नहीं करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन फरमाइश आ गई तो मैंने कर दिया। सवाल ही सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक को सुन रही है आपसे मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सुपर आज की। उसी के साथ साथ अब प्रोग्राम में जो है वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त करते के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने दिलों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक डियर लिसनर, रेडियो फजा एफएम 97.1 को आप समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान मुजफ्फर हैदर। मेरा और आपका साथ दो से चार तक है, हर सोमवार से लेकर जुमा तक, मंडे टू फ्राइडे। मुझे आप सुन सकेंगे सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा एफएम 97.1 पे। कोशिश करें कि आपके कानों तक वो बातें ना पहुंचे जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नजर आने वाले मुनाफिक चेहरों से आपको शदीद नफरत हो जाएगी।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Get ready to move.
14: It's all about the beats.
15: Wow,
16: Only Tune Super Hit Channel.
17: Fizz on 97.1 FM.

लोगों को इस बात से गरज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कोशिश कीजिए कि लोगों को खुश रखने के बजाय अपनी जात से वाबस्ता खुशियों को आप इंजॉय करना शुरू कीजिए। किसी के लिए अपनी खुशियों को कतई कुर्बान न कीजिए।

अपने आंसू को इतना महंगा कर दें कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश न करे, उन्हें मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दें कि हर कोई उसको पसंद करे। मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना कि हम किसी भी चीज के बगैर रहते हैं और फिर हम हर चीज के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज छोड़कर बगैर किसी चीज के रुखसत हो जाते हैं। सुनते रहिए FM 97.1 एंड ऐप रेडियो फजा, आपका अपना रेडियो है। फजा 97 को सर्च करने के लिए आप अभी डायल कीजिए www.radiofaza.co.uk। ऐप स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन स्टोर में टाइप कीजिए रेडियो फजा 97.1 FM और क्लिक कीजिए डाउनलोडिंग पे। एंजॉय कीजिए जितने प्रोग्राम म्यूजिक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

हाँ, वैसे बहुत अदील भट्ट साहब थे हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, बहुत अच्छे बंदे थे अदील भट्ट।

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। इसलिए सब्र कीजिए, हो सकता है आपका वक्त करीब हो।

आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ कि गुस्से में कभी कोई फैसला ना लीजिए, खुशी में कभी कोई वादा ना कीजिए, जोश में आकर कोई ऐसा बड़ा दावा ना कीजिए, और जज्बात में बहकर किसी भी किस्म की कसम ना खाइए, और किसी को नीचा दिखाने के लिए शोखी ना दिखाइए, और किसी की मजबूरी का कभी भी फायदा ना उठाइए। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब, क्योंकि काम की बातें आपको यहीं से मिलेंगी।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: यू आर प्लेइंग फैजान 97.1 FM।

प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए 0115710971 पे। अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और खूबसूरत सा पैगाम भेजिए, हम आपका पैगाम दुनिया को पढ़ के सुनाएंगे। अगर रेडियो फिजा को अपने मोबाइल पे सुनना चाहते हैं तो अभी डायल कीजिए गूगल पे जाके www.radiofaza.co.uk। अदरवाइज आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। अगर आप एप्पल यूजर हैं, आईफोन यूजर हैं, ऐप स्टोर पे जाइए, लिखिए रेडियो फजा 97.1 FM, एंजॉय कीजिए बेहतरीन बातें, बेहतरीन सॉन्ग और दिल को छूने वाले एंटरटेनमेंट।

रेडियो फसा को इतनी मोहब्बत देने का शुक्रिया, क्योंकि मोहब्बत में सूद जायज है। जो आपको थोड़ी मोहब्बत दे आप उसे दुगनी मोहब्बत दे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको दुगनी मोहब्बत से दो चार करें और आपके लिए आपकी पसंदीदा नगमे या गाने प्ले करते जाएं। सुनते रहिएगा फसा 97.1 FM एंड ऐप और जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ।

मायूस कभी मत होइएगा, बस अपनी कामयाबी का इंतजार कीजिए और मेहनत से वाबस्ता रहिए, क्योंकि मेहनत अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिर की भी जाया नहीं करते। फिर मिलेंगे, कल तक के लिए दीजिए इजाजत अपने होस्ट अपने मेजबान को। जाते जाते यही दुआ है, यही रिक्वेस्ट है, यही इस्तेदा है कि कोई गलती कोताही होगी तो माफ कीजिएगा, मुझे भी, अपनों को भी और गैरों को भी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

0: हिट म्यूजिक एंटरटेनमेंट।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
11: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
12: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
11: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
12: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
11: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
12: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
11: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
12: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
11: टेस्ट भी वाइब भी।
13: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays.
10: Foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।
13: Ready to move.
14: It's all about the beats.
15: Wow, FM.
16: Only Tune Super Hit Channel.
17: Fizz on 97.1 FM.
18: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर देना। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station
5: that plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 एफएम,
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 एफएम एंड ऐप.
9: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station that plays
9: foot tapping music.
10: Faza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

ओ हो हो हो तूने ना जाना मैं हूँ दीवाना, दिल में छुपी है मोहब्बत तेरी।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटिंग रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रेसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.
0: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
12: जो मंगना सी वो तो मिल गया।